के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुराना सुन रिफन्ड गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रि चौक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98621 37744 र 98153877।